0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मिन्दो लक्टी रहर बरा पानी बस्दा बेला अस्ति चिमचाम कहाँ रहेछ जाय त सोचो त लट्ठी ठिक्कन घर दान दान पानी बर्से टिकी मन छटपटाइ लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम र ढिक ढिकुम सुरक्षित ठाउँमा सरली नारी बत्ती
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिया ढ्यार जोखिम रहत उहमा र बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रहिए एम्बुलेन्स सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के सम्पर्क विवरण तक सूची बनाई एकचोटे प्रयोग के लाग झटपट झोला तयार पारी वो बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुई लगोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: अपने सुनती बाती रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ट्ज़

0: सोन सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई? लाओ मैं बनाता हूँ मिठाई।